0: भाई हद ही हो गई है, हद ही हो गई है। हमारे दूसरे घंटे में खैर आपका तो स्वागत है ही, लेकिन हद ही हो गई है अंतरा इस खबर में तो।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है इतनी सारी हदें यहाँ पे लगा दी है, कौन सी हद हो गई है पार, बताओ बताओ।
0: यू नो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हुई है हाल ही में, राइट? यू नो दैट,
1: राइट?
0: अब भाई सारे लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पुराने जमाने में प्रॉब्लम्स यूजुअली क्या होती हैं हॉल्स में, पुराना क्या आपके जमाने में भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, या तो किसी का फोन बजता रहता है या लोग बातें करते रहते हैं या यू नो डिस्टर्ब करते रहते हैं। बट ये जो कोलंबिया में हुआ वॉज द अल्टीमेट। वहां पर मूवी के बीच में निकालना पड़ा लोगों को बिकॉज somebody was farting, एंड इतनी जोर जोर से farting हो रहा था कि वो फ्लॉट्यूलेंस जो था पूरे हॉल में फैल गया, और उसके बाद में देयर वॉज नो वे टू स्टॉप, सो दे हैड टू स्टॉप द मूवी एंड दे हैड टू टेल एवरीबडी टू इवैक्यूएट क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। रब्बा मी बरसा मी, मुझे पता है ये तुम्हारी पास भी खबर थी और वो लूटी जा चुकी है, लेकिन अब इसके बारे में बताओ तुम कि तुम्हारा विचार क्या है। अगली बार आपको लगता है कि ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप होने चाहिए हॉल्स में भी?
1: इट्स अ गुड आइडिया। इस स्टूडियो में से अगर मुझे रेणुका को एग्जिट कराना हो तो आई कैन यूज दिस ट्रिक टू डू सो। 120 से भी ज्यादा, 200% शी विल गो आउट।
0: लेकिन तुम सोचो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा अगर स्टूडियो में फ्लॉट्यूलेंस का अटैक होता है किसी को। इमेजिन
1: जी,
0: जस्ट इमेजिन शो करते करते बीच में वो खुशबूएं।
1: एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव नेवर फेस्ड दिस, ओके?
0: नो, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कम टू थिंक ऑफ इट, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट।
1: नो, या सो बड़ा ही लाइक वी कैन एक्चुअली, आई रियली वांट टू ट्राई, लाइक यू नो, डोंट यू वांट टू सी रेणुकाज एक्सप्रेशन ऑल ऑफ अ सडन? सोचो कि हम लोग अभी मस्ती मैडनेस कर रहे हैं एंड आई यू नो फ्लॉट्यूलेंस की हवा जो है मैं यहाँ पे छोड़ू, रेणुका ऑन एयर है, माइक ऑन है, क्या करेगी रेणुका?
0: रेणुका माइक पे बोल देगी कि अभी अभी इसने ये जो हरकतें करी हैं इससे दूर रहो। तू सोच ले, मैं नेम एंड शेम करने में विश्वास रखती हूँ जहां मेरे ऑक्सीजन का सवाल है, एंड नॉट ओनली मी बट द होल वर्ल्ड, ऑल आर लिसनर्स विल नो अंतरा का पेट खराब है, फ्लॉट्यूलेंस इज एग्जिटिंग, ओके? डोंट ट्राई इट, नॉट विद मी।
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: पैर धो धो के पिएंगे, ऐसा कहा जाता है, बहुत फेमस कहावत है, धो धो. इतना बढ़िया काम, ये ऐसा इंसान है, इसके तो पैर धो धो के पीने चाहिए.
2: I know, that is so weird.
3: Crazy दुनिया, crazy खबरें, और हमारा ये crazy show.
2: तो भाई ऐसा है कि रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी मैडनेस, और इस समय पैर धो के पीने की बातें हो रही हैं. यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन सुनिए,
1: ये बात तो होती है इंडिया में, लेकिन इसको अप्लाई किया जा रहा है ग्वांगझो चाइना में. भाई वहां पे हुआ ये एनिमे का कन्वेंशन, ठीक है. तो एनिमे के कन्वेंशन में ये कॉस्प्लेयर्स होते हैं जो एकदम फुल एकदम एनिमे के कैरेक्टर्स की जैसे तैयार होके आते हैं एंड एवरीथिंग. अब इन्होंने अपने स्टॉल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, कुछ ये एनिमे के कैरेक्टर्स, वो जो वो वाले बक्से नहीं होते आइस वाले बॉक्सेस जिसमें हम लोग यूजुअली सारा जो ठंडा रखने के लिए ड्रिंक्स वगैरह लेकर जाते हैं, सो उसमें इन्होंने बनाया जो है समर्स के लिए जूसेस. एंड उसमें हमारे जो कॉस्प्लेयर्स है जो कि ये एनिमे कैरेक्टर्स बन के घूम रहे हैं, वो अपने अपने लड़कियां जो है पैर डुबो के बैठी हैं. एंड The one who are their fan. भाई बंदे आ रहे हैं, बंदी पैर डुबो के उसमें से जब जूस गिर रहा है, बंदा नीचे मुंह रख रहा है उससे जूस पी रहा है. What is happening guys? Like what is this?
2: नहीं, this is just another way of getting cheese. Before the bang bang, Radio Masi 24/7 पर चल रहा है आजकल के पागलपन का आपके साथ में शेयरिंग. So are you serious?
1: ये कैसा फेटिश है? I mean, मतलब I understand you are a fan, but then this how? अच्छा different type है कि कभी कभी कोई anime के cosplayer पैर निकाल निकाल के juice drop कर रही है, कुछ लोग आके जिसमें उन्होंने पैर डुबो के रखा है आके अपने glasses भर भर के लेके जाके पी रहे. क्या कर रहे हो भाई, हाइजीन के सारे lessons भूल गए जो स्कूल में पढ़े थे?
2: Hygiene doesn't matter when you're in love with somebody. सिर्फ तुम्हारा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होता और तुम पानी पी लेते हो जिसमें उसने पैर रखा हुआ. ओके, कांट हैंडल दैट.

0: to Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हाँ तो भाई, अगर कोई भी है यहाँ पर इंसान, लड़कियाँ जो कि शादी करने के लिए ढूंढ रही हैं एक अच्छा वर, तो भाई अगर आप सेटिस्फाई करते हो ये वाला क्राइटेरिया तो सोचो, चट मंगनी पट ब्याह रेडी बिल्कुल। और अगर नहीं हो तो क्राइटेरिया तो सुनी लो।
2: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
3: This gets my attention so soon. भाई आजकल के हर किसी के क्राइटेरियाज इतने यूनिक हो चुके हैं कि योर माइंड गेट्स ब्लोन कि भाई ये तो बहुत ही कमाल है।
1: Totally a highly misogynistic post. That's what I would call it. तो भाई एक इंसान, एक लड़का ढूंढ रहा है एक लड़की शादी करने के लिए, ओके। पर आप उसकी मेंटालिटी अगर देखेंगे, उसकी लिस्ट ऑफ डिमांड्स आप देखेंगे फॉर द आइडियल वुमन, तो आपको लगेगा कहाँ मिलता है ये आदमी, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस लिस्ट ही सेज दैट ही वुड ओनली मैरी अ वुमन हु इज अ वर्जिन, हैज नो पास्ट, is naturally beautiful, has the perfect height and is not a feminist. Okay, मतलब ये तो है nutshell, virgin तो हम समझ गए सारे के सारे हैं। अब naturally beautiful मतलब उसने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया, 5'2" चाहिए उसको परफेक्ट हाइट, 45 किलो चाहिए उसको एग्जैक्ट वेट, उसको खाना बनाना आना चाहिए ऑल क्यूजींस, नॉन फेमिनिस्ट, सोशल मीडिया कभी यूज नहीं करती है, मेल फ्रेंड्स ना हो, परमिशन मांगे बिफोर गोइंग एनीवेयर, शेयर्स हर लाइव लोकेशन 24/7, हैज नो पास्ट, टेक्स केयर ऑफ माय पेरेंट्स लाइक हर ओन, ऐसी लड़की जैसे मिलेगी मैं शादी करने को तैयार हूँ। मुझे तो लगता है कि लड़की छोड़िए, आपके लिए थेरेपिस्ट तैयार है।
3: नो, आई नो अ प्लेस वेयर ही कैन गो टू।
1: कहाँ?
3: He can go to hell.

0: के.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: भाई इंडिया के बाबा मार्केट में क्या कुछ नहीं बिक रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा एडवांस चल रही है वहाँ पे चीजें.
3: जप नाम
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
3: आई कांट गेट ओवर अभय देओल एंड जप, नॉट अभय देओल, व्हिच देओल इज दिस? बॉबी देओल एंड जप नाम. रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चल रहा है क्या चल रहा है अंतरा? मस्ती मैडनेस. और अंतरा जी हमको बाबा जी की दुनिया में लेके जा रही है, चलिए जब ना
2: जी. बाबा जी इन दिस केस, दिस बाबा जी जो है ये ताड़ ताड़ के चीजें आपके पास से, आपकी बॉडी से सब कुछ ताड़ ताड़ के आपके उससे निकालते हैं, पता है ना ताड़ना?
3: हाँ बिल्कुल,
2: प्रॉपर ताड़ना.
3: एंड
2: ही इज कॉल्ड द ताड़न बाबा.
3: ओह गॉड नो, ओके गो ऑन.
2: जो तो बेसिकली द वीडियो आई कैन सी इज बाबा जी ऐसे खड़े हैं, बंदी ऐसे खड़ी है, दोनों के आंखें और आंखें जो है एक दूसरे को ताड़ रही होती है. बाबा जी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से घूमते हैं और ताड़ते रहते हैं कि तेरे बॉडी में जो कुछ भी है वो अब ऐसे ताड़ ताड़ के मैं निकाल दूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा. ही इज नोन फॉर एक्सोर्सिज्म एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कुछ भी नेगेटिव तेरे बॉडी में होगा मैं उसको ताड़ ताड़ के निकाल दूंगा. अच्छा ये तो हुई पूरी बात बाबा जी की. सबसे पहला कमेंट जो बंदी का इस वाले वीडियो पे आया है वो कहती है, Isn't this every second uncle on the streets like a ताड़न बाबा?
3: बात तो सही है, हमें तो बचपन से ताड़न बाबुओं की इतनी ज्यादा आदत है, स्पेशली दिल्ली में. तो मैं कहती हूँ तड़वाने
2: की. I felt so relatable. I said, भाई बहन like इतना relatable तो मैं पोस्ट से नहीं कर रही थी जितना मैं तेरी बात से कर रही हूँ.
3: बट फर्क ये था कि हम उनको बीमारी समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे. बीमारियां निकालते नहीं है, वो फैलाते हैं.
2: हाँ कुछ भी बिक रहा है वही मैं कह रही हूँ. ताड़न बाबा उसके पास भी लाइन लगा लगा के लोग आ रहे हैं कि वो ताड़ ताड़ के तड़ी पार कर देंगे सब कुछ.
3: I think this बाबा सिस्टम is something that I have a lot to talk about. मतलब ये पूरा शो खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं गाना चलाती हूँ. रेडियो मस्ती 24/7 वापस आइए. और अजीब गरीब खबरें हमारे लिए बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर कितनी सारी बतानी है ना आज इनको यार. टू मेनी न्यूज. या

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: चलिए बात हो जाती है हमारी सिंगापुर एयरलाइंस की बिजनेस क्लास की. ऑलराइट, एनीवन हुज ट्रैवल्ड बिजनेस सिंगापुर एयरलाइंस वुड नो एग्जैक्टली. वहाँ पर अभी अंदर जाते लोग बाद में हैं, पर आइडियाज उनके टोटली पहले से बदल जाते हैं, एक्सेंट बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है. सो ऐसे ही होती है, ठीक है. अंतरा से मत देखो.
3: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
4: I'm just wondering, is this why my accent has not changed?
2: Okay, I don't know if you've traveled business on SQ or not, but well, it is very beautiful. It is a very relaxing thing, especially agar tum bahut dino tak ghar se bahar ho na, to tum suddenly Singapore Airlines waise bhi, when you just enter Singapore Airlines, you just feel that you're half home anyway, you know. So kahin bhi ho duniya mein, ek wo feeling si aa jati hai, which I totally respect them for. Baki kya hai ki recently ek Singapore Airlines mein ek ladki ne travel kiya bhai Singapore to Los Angeles, aur ye hua July 28th 2024 mein. Okay, and main ye baat isliye aaj ke din mein bata rahi hu because abhi recently iska jo pura decision hai wo liya gaya. So jab aap Singapore Airlines mein baithte ho business क्लास में, सबसे पहले आपको साटे सर्व होते हैं, ओके, ऑन वुडन स्क्यूअर्स एंड वेरी ब्यूटिफुली दे आर सर्व्ड एंड यू नो इट्स लाइक समथिंग दैट एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू. सो अब क्या हुआ कि जो वुडन स्क्यूअर होता है ना भाई साहब, हमें भी पता है सबको, है ना, उसकी एक छोटा सा छिलका जो था वुडन स्क्यूअर का, वो उस लड़की के गले में अटक गया था. Okay. And at that time, she had had immediate pain, choking sensation, coughing, respiratory distress and physical injury. 3.8 centimeters ki wo stick hoti hai, jiske andar se ek splinter jo hota na, ek splinter that measured 1.5 inches, matlab bas wahi atak gaya tha. Usne... So she suffered a very difficult moment on the flight, as she explained. Aur uske baad throat discomfort, vocal fatigue, raspiness, tightness, pain was prolonged, speaking, singing. And because she is, you know, somebody who needs her voice, she's a yoga teacher and a former child star, usko gana bhi hota hai and everything. To usne sue kar diya. Aur haal hi mein, of course, wo jeet gayi. वो सू करने के बाद में, और उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं, डैमेजेस, ऐसी बात है. तुम कुछ कहना चाहोगी इसके बारे में?
4: मेरा, मैं बहुत ही गंदी सी एक लाइन मेरे दिमाग में आई, फिर मुझे, मैंने अपने आप को रोक लिया कि लेट मी नॉट से दैट ऑन एयर, बट देन रियली फील बैड फॉर हर. हम लोग को सू भी तो नहीं करना आता रेणुका कि मतलब कोई चीज पकड़ ले और हम सू कर दें.
2: जी,
4: हम बस दूसरा वाला ही सू कर पाएंगे
2: जो दो बार
4: वही आता है.
2: पर खबर में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अभी डिसीजन नहीं हुआ है, बट शी हैज सीक्ड डैमेजेस फॉर पास्ट फ्यूचर मेडिकल बिल्स, पास्ट फ्यूचर लॉसेस ऑफ अर्निंग्स एंड अर्निंग कैपेसिटी, इमोशनल डिस्ट्रेस.
4: बट इट्स सो मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं है, मतलब हाउ आर दे टू बी ब्लेम्ड? किसको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा?
2: यस, तुम जैसे खाते हो, अब तुम अगर गर्दन में ज्यादा अंदर तक डाल लोगे किसी चीज को तो
4: इट्स वेरी
2: मिलते हैं आपको अगले घंटे. तब तक अगर आप साटे खा रहे हो तो ध्यान से खा.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मैडनेस चल रहा है।
1: हाँ जी हाँ जी भाई, आओ ब्यूटी मार्केट में चलते हैं इसी बात पे। लॉन्ग वीकेंड जब लोग जो है जो यहाँ पे है और बाहर छुट्टियों पे नहीं गए हैं तो फिर वो तो घर में बैठ के फेस मास्क लगा ही सकते हैं। सो वेल, साउथ कोरिया पे एवरीबडी नोज दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद यू नो द प्रोसीजर्स और ये सारी ब्यूटी की थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है। तो वहाँ की एक मॉडल हांग है इनका नाम, शी बिकेम अल्टीमेट लेवल का उनका ऑब्सेशन हो गया विद द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। सो ये सिलिकॉन और बोटॉक्स और ये कराते चेहरे पे उनको, एंड शी बिकॉज शी वॉज मॉडल एंड सिंगर भी रह चुकी हैं, सो उनको लगा कि दिस इज द ओनली वे आउट, अगर ये नहीं कराऊंगी तो मेरी जिंदगी उसके बाद कुछ भी नहीं है। ऑब्सेशन इतने लेवल पर पहुँच गया, शी गॉट अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज डन। ओके, देन डॉक्टर्स अल्टीमेटली रिफ्यूज कि अब वो उनके ऊपर और कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। We are not even going to inject you with anything because it's not good for you anymore.
0: हाँ, of course.
1: Like उस level तक पहुँच गया।
0: बिल्कुल।
1: But then she was obsessed. She took matters अपने ही हाथों में. She started injecting cooking oil.
0: है।
1: अपने face पे।
0: है। इतना भी क्या चिकना बनने का शौक मतलब?
1: So that cooking oil, it caused severe damage permanently. बहुत सारा कुछ उनके फेस में जो पहले बहुत सारी सर्जरीज के बाद ठीक हो गया था, आई डोंट नो ठीक हो गया था इज नॉट द करेक्ट थिंग टू से ओवर हियर, बट देन व्हाटएवर शी वाज लुकिंग इट जस्ट वेंट बजर्क। सब कुछ अंदर उनके फेस के टिश्यूज डेड हो गए एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड। डॉक्टर्स ने वापस से सर्जरी उसको ठीक करने के लिए परफॉर्म किया बट हर फेस हैज बीन परमानेंटली डैमेज्ड एंड डिफॉर्म्ड।
0: सो आई थिंक गाइस द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहली बात तो आप जैसे भी हैं आप ब्यूटिफुल हैं, ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। और अगर आपको मेडिकल रीजन से कोई सर्जरीज कोई चेंजेस कुछ ना कुछ कराना जरूरी है तो फिर प्लीज अपने आप कोशिश ना करें, प्लीज ना करें।
1: yeah.
0: क्योंकि इंसान मतलब क्या कर रहे हो आप, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे काम है, ये क्या इंजेक्शन लेके कुकिंग ऑयल ठूस रहे हो अपने अंदर, खा लो इससे अच्छा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, दैट टू विद अ हाइब्रिड मॉडल फॉर योर कन्वीनियंस। 12 आवर्स ट्रेनिंग पर लेवल, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस ऑफर्ड फॉर 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: जिंदगी में बेटा एक चीज सीख लो, जब कोई एक्स हो गया तो वो एक्स हो गया, ठीक है, उसको वाई पूछने की जरूरत नहीं है, गया।
3: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है, करेक्ट, यू मूव ऑन, डोंट लुक बैक,
2: टोटली,
3: नो नो नो।
2: और अगर कोई एक्स तुम्हें बुलाने की कोशिश भी करे तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क, नो नो नो। लेकिन नहीं, ये बातें आप सीखोगे थोड़े, आप तो खुद भुगतोगे तब समझ में आएगी। तो अब मैं एक चिलिंग केस बताने वाली हूँ, बहुत ही चिलिंग केस है ये, ठीक है। सो अब क्या हुआ, एक पति पत्नी का डिवोर्स हो चुका था। नाउ द मैन कॉल्ड अप द डिवोर्स्ड वाइफ और उसको कहने लगा कि भाई, यू नो, लेट्स मूव ऑन, रिकॉन्साइल करते हैं, लेट्स नॉट दिस दैट, ओके। एंड वो भी बंदी आ गई, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी सिंस द डिवोर्स, और दो साल हो चुके इस बात को, और फिर भी वो आ गई। एंड उसके बाद इन दोनों ने एक रील बनाई, एक वीडियो रील, एंड दिस इज हैपेंड इन इंडिया। उसने रील बनाई एंड इन द रील द गाय इज सिंगिंग द सॉन्ग, याद तेरी बन गई सजना वे साडे सीने च नसूर। मतलब बेसिकली ही वॉज ईगो उसकी इतनी ज़्यादा हर्ट हुई पड़ी थी, एंड ही वॉज सेइंग कि यू नो मेमोरीज ऑफ यू हैव बिकम अ वूंड इन माई हार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड उसमें ही इज ऑल्सो मेकिंग अ विक्ट्री साइन कि जैसे कि यू नो वी हैव रिकनसाइल्ड एंड ऑल दैट। एंड सून आफ्टर दैट ही किल्ड हर, एंड ही किल्ड हर, ही बरीड हर बॉडी। एंड आफ्टर दैट, मतलब एक आस पास कुछ लोग थे, जानवर, वो उसकी बॉडी भी आधी ज़्यादा यू नो वॉज मिसिंग एंड वट एवर। बट वेल, जैसे कहते हैं हर क्राइम कोई ना कोई एविडेंस छोड़ ही जाता है, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया एंड ऑल दैट हैपन एंड देन ही वॉज यू नो। बट द रियल रीजन वॉज दैट ही डिड नॉट लाइक द होल आइडिया दैट द वुमन हैड डिसाइडेड टू डिवोर्स हिम। And his ego was troubling him for 2 years and he did this.
3: Hey, भगवान, तभी तभी जो पहले कहा था, बुलाएंगे बट जाने का
2: नहीं जाना।
3: Think about yourself first, यार, क्या क्या इतना क्या वो, मतलब अंधे मत हो जाओ।
2: और इसीलिए हमारे पास शो है ना, हाँ, हमारा शो है डियर मस्ती दिल से, हमें लिखो, हम बताएंगे क्या करना है उस इंसान के साथ। जब भी ऐसा कोई सवाल आपकी जिंदगी में आए, राइट टू अस, Radio Masti 24/7. Right, Antra?
3: Absolutely.
2: Yes.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: भाई ये वाला वीकेंड अंतरा खबरें तो होती रहेंगी, लेकिन ये वाला वीकेंड आता है साल में एक बार, राइट? वीकेंड भी क्या, ये वाला मौका आता है. सो इट्स द नेशनल डे गाइस, हैप्पी नेशनल डे. ओ माय गॉड, हैप्पी 61st बर्थडे सिंगापुर.
3: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है. आई लव दिस टाइम पीरियड. इस टाइम पे एक तो सिंगापुर इतना वो इतनी फील आ जाती है ना इस टाइम पे, कि आप जहां से निकलो एंड यू सी. एंड मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या अमेजिंग लगता है, व्हेन आई एम सिटिंग इन द बस and especially when I'm sitting upper wale level pe na and I pass by these condos and everything, har jagah pe no flags lage hue milte. It is so beautiful, itna khoobsurat lagta hai na ki I cannot describe. I feel so happy.
2: Yeah, and Antra, mere story pe, Instagram ki story pe last, I think just
3: I always wait for that.
2: Yeah, I had actually posted again, as always, the helicopters carrying the flag, and you know that flag ka 600 किलो से भी ज्यादा का वेट होता है. मैं तो उसके बारे में पढ़ रही थी कैसे बनाते हैं वो फ्लैग एंड ऑल दैट, बट दैट इज बिसाइड्स. बट यू नो, मेरे घर के बाहर इज द प्लेस वेयर फायरवर्क्स के लिए बहुत लोग आते हैं, एंड उस जगह पे ट्रैफिक मतलब तुम सोच नहीं सकते, लेकिन नॉट अ सिंगल हॉर्न. इनफैक्ट गाड़ियों पे गाड़ियां साइड पे लगी हुई हैं, एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड वेटिंग फॉर द सेम मोमेंट, द मोमेंट द फायरवर्क्स कम. यू नो, मतलब किसी को ये चिंता नहीं है कि क्या है इतना. एंड द वे द ट्रैफिक इज बीइंग मॉडरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द पुलिस, ओ माय गॉड, अमेजिंग वर्क. सो यस, सो हैप्पी नेशनल डे वाला वीकेंड गाइज, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ हैपनिंग. हमारे शाही महारानी में ऑफकोर्स पूरे ऑगस्ट बहुत ही कमाल का जो उनका ब्रंच के प्राइसेस चल रहे हैं, प्लस 9th ऑगस्ट स्पेशल.
3: That is right.
2: Very special brunch, right? क्या हो रहा है?
3: Yeah, they have this special prata station with Singapore style chicken curry, which I am like, oh my god, that is amazing.
2: Yummy. Absolutely. So, अगर आप बाकी किसी दिन नहीं जा सकते, 9th August की booking तो definitely करवा लीजिए. शाही महारानी 6235-8840, मुझे तो number रटा हुआ है. And,
3: oh my god.
2: Yeah, and Joya Lucas, my god, the kind of promotions that they have, 30% off making charges, 9% GST wave off. This only happens one nation, infinite brilliance. और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में बताएंगे, कोशिश करेंगे अभी, लेकिन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, हैप्पी नेशनल डे वीकेंड, एंड ऑफ कोर्स रेड एंड व्हाइट पहनना मत.

0: किस तरफ जाएंगे आप, यही है सवाल इस बार मेरा।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24.
2: तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी, मैं तो तेरे पीछे ही आऊं, जहां जाएगी मैं आ रही हूँ। ठीक है, रेडियो मसी 24/7 पर। जी हाँ, अंतरा पूछ रही है मेरे से कहाँ जाओगे, केड़े पासे जाइए सजना।
0: ओह गॉड, I was so glad that you know last week ये गाना था ही नहीं, और जो मैंने तबाही मचाई है इनके countdown की, उस पे तो मुझे और भी गर्व है अपने आप पे। But well, coming back to this
2: वो
0: one,
2: मुझे कल पता लग गया है और मैंने देखा है कि मेरी playlist से किस तरह के खिलवाड़ किए गए हैं, घिनौने किस्म के, और मुझे कल कितनी मेहनत करनी पड़ी है ये कोई मेरे से पूछे। But that is off mic discussion, खबर बताओ
0: जी भाई। कर्नाटका के हाई कोर्ट में एक बंदी केस लेके आई है। अब जज पूछ रहा है कि इसको किस दफा में डाला जाए, कि कैसे दफा कर दिया जाए। आई हैव नो आइडिया। सो बेसिकली शी इज सेइंग कि भाई मदर इन लॉ जो है मुझसे रोज डोसा बनवाती है, रोज रागी बॉल्स बनवाती है, इट इज हैरेसमेंट एंड क्रुएल्टी। अब जज साहब पूछ रहे हैं कि मतलब उनके दिमाग में हम श्योर हो गए कि इसे कैसे दफा करूं इसको, या किस दफा में डालूं। कह रही है मेरा हेयर शैम्पू चेंज कर दिया इन्होंने और उसकी वजह से मुझे हेयर लॉस हो रहा है, तो ये क्रुएल्टी है जज साहब।
2: यहाँ पर है तो सही, है तो सही, मेरे हिसाब से तो ये टू मच डिफरेंस
0: ना, वो हम दोनों के अंदर की लड़कियां हेयर लॉस पे जो इसके साथ हुई है। आपने नोटिस किया, डोसा रागी बॉल तक कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, हेयर लॉस जैसे ही आया।
2: I'm done with this. But यार ये ना, ये हेयर की बात नहीं होनी चाहिए। पता कितना कितना पाल पोस के हम इनको बड़ा करते हैं, एक एक बाल अगर किसी के खाने में भी डल जाए ना, तो मैं कहती हूँ वापस दे दे, मेरा बाल है तो मैं वापस लगाऊंगी। लेकिन That's not the point. The point is
0: Renuka became like कि तुझे माँ की साड़ी नहीं लानी चाहिए थी इस बात पे। Like she has become that.
2: बिल्कुल
0: उनकी intensity उतनी ही है।
2: कुछ भी कर लो, बाल माँ का नहीं होना चाहिए। You know what I mean? बिल्कुल। हाँ। तो इसने बालों को कैसे हाथ लगाया यार? नहीं यार, ये कोई ना कोई दफा बनाओ। मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, ये वाला तो जाना ही चाहिए। ठीक है ना, जो जो मेरे साथ है इसी टाइम लिखे 9151896 3 पर। बालों को नहीं, बालों को नहीं।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, and on Radio Musty 24/7, obviously, ये वाला शो आज की तारीख है 7 तारीख और आप सुनेंगे इसको दोबारा से on 8 तारीख, right? और 8 तारीख को हम कहाँ होंगे, अंतरा जी कहाँ होंगे हम इस टाइम?
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो,
1: हमारी पहचान,
3: अपनी जगहों पे ऐश करते हुए, छुट्टी है छुट्टी, ऑनकोर है ऑनकोर।
1: तुम तो ना बस यही काम करो, मैं पहचान की बात कर रही थी और हम होने वाले हैं पहचान। हमारी पहचान क्या है? हम भारत से आए सिंगापुर और हम सिंगापुर में भारत को ढूंढते हैं, बनाया है हमने, और साथ ही साथ में सिंगापुर को हम कितनी जोर से एकदम अपना समझ के बैठे हैं। कैसे हम लोगों की लाइफ कितनी अलग है ना, दी एनआरआईज एंड द पीपल हु ट्रैवल्ड अवे फ्रॉम इंडिया, राइट? सो उसी की एक पोएट्री में, ऐसी जिंदगी के बारे में पोएट्री के तरीके से और ब्यूटिफुल से, अमेजिंग से तरीके से टीम आहिस्ता आहिस्ता जो कि 8th को प्रेजेंट कर रही है पहचान, राइट? एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग देयर एंड सो आर यू अंतरा जी, बाय द वे, कि हम वहां पर बैठ के सुनने वाले हैं उनको, बिकॉज आई लव टीम आहिस्ता आहिस्ता, द वे दे स्पीक एंड दे, कहते हैं ना, दे वीव वर्ड्स इतनी ब्यूटिफुल तरीके से करते हैं, और इस बार वो लोग कर रहे हैं कल के दिन में 8th को, एंड अगर वैसे तो इट्स अ सोल्ड आउट शो, बट डेफिनेटली अगर आपको एक दो टिकट्स चाहिए तो शायद मैं दिलवा पाऊं, मतलब मेरी इतनी तो सुनते
3: हैं साइड से।
1: हाँ,
3: तो मैं तो यही कह रही थी कि अपनी अपनी जगह पे हम ऐश इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी सीट्स अलग अलग हैं।
1: बिल्कुल।
3: तो ये अपनी सीट पे बैठ के ऐश करेंगी, मैं अपनी सीट पे बैठ के ऐश करूंगी, बट देन डेफिनेटली इट इज, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज रेणुका पहले इनके शो में जा चुकी है एंड शी हैड स्पोकन सो हाईली अबाउट देम, आई वाज लाइक कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा वी विल गो, I'll go and watch them and I'm totally looking forward to it.
1: Absolutely. So, भारत और सिंगापुर जो दोनों देश हमारे दिलों के इतने ज़्यादा करीब हैं, उन दोनों के बीच में ये poetry हिंदी में, apart from just poetry, there is this unplugged singing which goes बीच-बीच में. It just is amazing.
3: Very nice. Yeah. Yes.
1: So, this is happening tomorrow and of course, apart from that, happy National Day everybody. Before we say goodbye, हम चाहेंगे कि हम माजुला सिंगापुर के लिए खड़े होके बिल्कुल एक सलाम हम सब की तरफ से, बहुत ही प्यार वाला, एंड ऑफ कोर्स डोंट मिस द फायरवर्क्स ऑन संडे, राइट अंतरा जी?
3: यस, लुकिंग फॉरवर्ड, सो एक्साइटेड,
1: हैव अ गुड वीकेंड गाइस एंड एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड। वैसे मंडे सुबह मैं यही मिलूंगी 7 बजे न्यूज लेके, आ जाना। हाउ बोरिंग डज इट साउंड राइट नाउ?
4: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है,
5: लड़ी है, लड़ी है, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
5: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
6: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
7: टाइम टू रेज द बार,
8: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
9: Now pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

हेलो नमस्कार, स्वागत स्वागत और स्वागत आप सभी का इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। और मेरा नाम है समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज हम एक ऐसे लेजेंड की बात करने वाले हैं जो कमाल के टैलेंटेड थे, जो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे। उफ, एक इंसान में इतना टैलेंट, गजब है भाई। लेकिन ये टैलेंट है कौन भाई? देखिए मुझे तो पता है क्योंकि मैं आज इनकी बात करने वाला हूँ। एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? सिंगापुर गेसेस कीजिए, क्या कह रहे हैं आप, मैं ही बता दूं। तो चलिए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं।

0: सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार।
1: हाँ जी, तो ये है संगीत की दुनिया के शहंशाह द मल्टी टैलेंटेड किशोर कुमार। सिंगापुर एक वक्त था जब 80% हिंदी फिल्मों के गाने किशोर कुमार साहब गा रहे थे, मेल सिंगर्स की मैं बात करूं तो, और आवाज बन गए थे वो बड़े बड़े एक्टर्स की, चाहे वो देव आनंद साहब हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, उनका गाया हुआ एक एक गाना सुपरहिट है। मिसालें दी जाती उनकी। किशोर कुमार बार बार पैदा नहीं होते। यूडलिंग किंग किशोरदा के फैन न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है भाई, बहुत कुछ बाकी है किशोरदा के बारे में बताने को, लेकिन पहले आप ये गाने सुनिए, माहौल बनाते हैं। किशोरदा की आवाज में ये बेहतरीन नगमे आपकी तरफ आ रहे हैं और इनके बाद हम बातें करेंगे आवाज के इस शहंशाह की। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स फिर से।

0: Billy, Billy, Billy, Billy.
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स मेरे यानी आपके अपने समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हम बात करें किशोर दा की। किशोर दा गाते तो बेहद कमाल थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उनकी एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस थी वो थी उनका मजाकिया अंदाज। और ये मजाकिया अंदाज उनका उनकी एक्टिंग में भी झलकता है, जहां वो कमाल की कॉमेडी करते थे। आपको अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ कि किशोर दा का नाम बेस्ट कॉमेडियन में महमूद भाई और जॉनी वॉकर के साथ लिया जाता था।
3: ये कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का?
4: जी मुल्क है खंडवा।
3: खंडवा
4: जी, अब आप ये बताइए आप कौन सा कट पसंद करते हैं, अशोक कट, दिलीप कट या राज कट?
2: चाहे वो सुनील दत्त के साथ पड़ोसन हो, चाहे चलती का नाम गाड़ी हो जिसमें तीनों भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार ने काम किया था, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी वो मजाक करते रहते थे, चाहे वो सीरियस सीन ही क्यों ना हो। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। एक फिल्म थी पहली झलक, जिसमें किशोर दा के साथ प्राण साहब भी थे। अब प्राण साहब को किशोर दा के पैर पर मारना था और किशोर दा को जैसे उस पर बहुत जोर से लगी है ऐसे रिएक्ट करना था, लेकिन जैसे ही प्राण साहब मारे किशोर दा हंसने लगे। ऐसे करते करते 12 टेक्स हो गए। डायरेक्टर ने कहा प्राण साहब इन्हें समझाइए, तो प्राण साहब बोले आप तो टेक लीजिए और देखिए कैसे टेक पूरा होता है। डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला इस बार प्राण साहब ने इस बार फिल्मी लात नहीं मारी बल्कि असली में जोर से किशोर दा के पैर पर मारा और किशोर दा दर्द के मारे चिल्लाने लगे। डायरेक्टर को तो यही चाहिए था। डायरेक्टर बोला परफेक्ट शॉट। ऐसे थे हमारे किशोर दा। सिंगापुर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे और किस्से हैं मेरे पास इस लेजेंड की जिंदगी से जुड़े हुए, जो आप सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे भी और वाह वाह भी कर उठेंगे। तो चलिए एक काम करता हूँ, इन गानों को सुनवा देता हूँ पहले आपको। किशोर दा की मदहोश कर देने वाली आवाज में कुछ नगमे आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें एंजॉय कीजिए, गुनगुना लीजिएगा साथ में और सुनते रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव अपने समय के साथ।
5: अरे

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी पर्सनैलिटी किशोर कुमार की। सिंगापुर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की जोड़ी भी कमाल की थी। इन दोनों ने न जाने कितने ही हिट गाने गाए। हालांकि लता जी की जोड़ी और सिंगर्स के साथ भी थी, जैसे रफी साहब के साथ, मुकेश जी के साथ, लेकिन किशोरदा के साथ उनका रिश्ता अलग ही था, अनोखा था, मजेदार था। लता जी कहती हैं कि वो किशोरदा के सामने गाना नहीं गाती थी क्योंकि वो अजीब अजीब हरकत करते थे जिससे उन्हें हंसी आ जाती थी, इसलिए वो पर्दा लगा देती थी। मतलब किशोरदा और लता जी के बीच पर्दा होता था ताकि लता जी को दिखे ना, वरना लता जी भटक जाएंगी, सुर नहीं लगा पाएंगी, उन्हीं को देखकर हंसती रहेंगी। क्या कमाल के इंसान थे किशोरदा। मुझे नहीं लगता ऐसा इंसान अब कोई पैदा होगा, और आपने भी नहीं देखा होगा। अच्छा, लता जी की पहली मुलाकात किशोर से कैसे हुई, इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। लता जी एक बार ट्रेन से मलाड जा रही थी। मलाड मुंबई का एक सबब है, वहां जा रही थी वो। वहां खेमचंद जी रहते थे, खेमचंद प्रकाश, जो कि एक बड़े मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। उनका स्टूडियो था वहां पर, तो वो वहां जा रही थी उनके स्टूडियो में। तो जिस स्टेशन पर वो थी वहां किशोरदा भी आकर बैठ गए। ट्रेन आई, लता जी उसमें बैठ गई, किशोरदा भी उसी डिब्बे में बैठ गए। लता जी मलाड उतर गई तो किशोरदा भी उतर गए। लता जी ने तांगा किया और उसमें बैठकर चलने लग गई। किशोरदा ने भी एक अलग तांगा किया और उसमें चलने लग गए। अब लता जी को थोड़ा डर लगने लगा कि यार ये भाई है कौन जो पीछा कर रहा है मेरा। वो जल्दी से उतरी और खेमचंद जी के घर में घुस गई और बोली, एक लड़का है जो स्टेशन से मेरा पीछा कर रहा है और यहां तक भी आ गया। इतने में किशोरदा भी स्टूडियो के अंदर आ गए। लता जी ने इशारे में कहा, यही है सर, वो लड़का यही है। खेमचंद जी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो किशोर है, अशोक जी का छोटा भाई, अशोक कुमार का। तब जाके लता जी को तसल्ली आई। यही दिन था जब लता जी किशोरदा से डरी थी, बाद में तो वो गहरे दोस्त बन गए। पहले इस मजेदार किस्से के बाद एक मजेदार गाना आपके लिए आ रहा है रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। ऐसे किस्से किशोरदा से जुड़े मैं लाता रहूंगा। मेरा नाम है समर, सुनते रहिए बस आप।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो, और आज की फनकार का नाम है यूडलिंग किंग किशोर कुमार। सिंगापुर किशोर कुमार शुरू से ही टैलेंटेड थे, पढ़ाई में तो वो थे ही, साथ ही म्यूजिक और सिंगिंग की तरफ भी उनका ध्यान था। दादा मुनि यानी उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब ये बताते हैं कि वो हर किसी की कॉपी कर लेता था, उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा कमाल का था और कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था, मतलब थोड़ी सी कोशिश करता था और उसके बाद वो बजाना सीख जाता था बगैर किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। जब ये छोटे थे तो इनके बड़े भाई या यूं कहिए कि मंझले भाई अनूप कुमार साहब एक यूडलिंग का रिकॉर्ड लेकर आए थे, एक ऑस्ट्रियन सिंगर थे तो वो उनकी नकल करने लगे, मिमिक्री अच्छी कर लेते थे और केएल सहगल साहब जो उस वक्त के सुपरस्टार सिंगर थे उनके बहुत बड़े फैन थे, सारा जमाना उनका फैन था, तो किशोरदा भी थे, बचपन से उन्हीं के गाने गाया करते थे। जब ये मुंबई आए कुछ बनने के लिए दादा मुनि के पास ये रहते थे, बॉम्बे टॉकीज की कैंटीन में बैठे बैठे कुछ ना कुछ बजाते रहते थे, टेबल बजाते रहते थे और गाते रहते थे मुंह से बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो लोग बोलते थे अरे यार दादा मुनि हीरो है तो क्या तू भी बन जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, दादा मुनि को देखो कितने हैंडसम है। बहरहाल अशोक कुमार क्योंकि बड़े भाई थे और बहुत बड़े स्टार थे उस जमाने के, तो उन्होंने अपनी सिफारिश से एक छोटा सा रोल दिला दिया फिल्म शिकारी में। कुछ गानों में कोरस गा लेते थे किशोरदा, भाई कुछ काम तो करना सीखो। अब आप इमेजिन कीजिए किशोरदा कोरस में गा रहे हैं। भाई टाइम टाइम की बात है, गाना पड़ा। खैर इनको पहला मौका मिला गाने का फिल्म जिद्दी में, जिसमें एक नया नया लड़का था, नाम था उसका देवानंद। अब 1954 में एक फिल्म आई नौकरी, ये किशोरदा के लिए खास थी क्योंकि डायरेक्टर थे इसके बिमल रॉय और संगीतकार थे सलिल चौधरी। फिल्म में किशोरदा को एज अ हीरो कास्ट किया गया। फिल्म का जो मेन गाना है उसे गाने के लिए किशोरदा ने बिमल रॉय से कहा कि ये गाना मैं खुद गाऊंगा, लेकिन सलिल चौधरी ने कहा कि ये कैसे गाएगा यार, ये कोई बाकायदा सिंगर थोड़ी है, इसने कोई ट्रेनिंग वेनिंग ले नहीं रखी है। लेकिन बिमल दा के कहने पर उन्होंने वो गाना गाया, और न सिर्फ गाया बल्कि ऐसा गाया कि वो गाना हिट हो गया।
2: छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए।
1: ये था वो गाना। वेल अभी आप किशोरदा के मजेदार गाने सुनिए, मिलते हैं इन गानों के उस पार। मैं हूँ समर, रहिएगा यहीं पर रेडियो मसी 24/7 लाइव है, ये किशोरदा स्पेशल लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं आप। कीप लिसनिंग।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: वेलकम बैक, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स और सुनाने वाला है समर। किशोरदा की बातें हो रही हैं आज। किशोरदा जो अपने हर फन मौला अंदाज के लिए जाने जाते थे, हर फन में माहिर। अगर किसी सेट पर वो मौजूद हैं तो हर आदमी एंजॉय करता था जब तक किशोरदा वहां मौजूद रहते थे। स्टूडियोज का भी यही हाल था। उनकी आदत थी कि वो ज्यादातर बात गाकर बोलते थे, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। जावेद अख्तर साहब बताते हैं कि एक दिन वो स्टूडियो में थे, उन्हीं की किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुर्सी नहीं थी। इतने में किशोरदा गाते हुए बोलते हैं, अरे मेरी कुर्सी कहाँ है, मेरी कुर्सी कहाँ है। मतलब मजाकिया अंदाज। उनके आने से ना हर किसी के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। आशा भोसले जी बताती हैं कि किशोरदा ने अपना एक मानस पुत्र बना लिया था। मतलब वो जब स्टूडियो में आते थे तो जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर आते हैं वैसे आते थे, जबकि कोई छोटा बच्चा होता नहीं था। मतलब ऐसे इमेजिन कर लेते थे कि एक छोटा बच्चा है मेरे साथ जिसकी मैं उंगली पकड़ कर आ रहा हूँ। और खास बात यह कि उसको सबसे मिलवाते भी थे, बेटा नमस्ते करो, फिर वो खुद ही बच्चे की आवाज में बोलते थे, नमस्ते अंकल। और जब गाना उनको अच्छा नहीं लगता था तो वो खुद न बोलकर बच्चे की आवाज में बोलते थे, मुझे गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अंकल। आशा जी बताती हैं कि कुछ दिनों बाद हमें भी उस बच्चे की आदत सी हो गई थी। मतलब किशोरदा की इन हरकतों से हमारा ब्रेन वॉश हो जाया करता था, ब्रेन फ्रेश हो जाया करता था। वो जैसे ही स्टूडियो में आते हम खुद ही चलकर उनके मानस पुत्र से हेलो करने लग गए। सिंगापुर कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि काश ऐसे इंसान मेरे भी दोस्त होते। किशोर कुमार के बारे में क्या कहा जाए, मतलब इतनी बातें हैं उनकी कि ये टाइम तो काफी है नहीं, महीने बीत जाएंगे लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। तो एक काम करते हैं, बातें चलती रहेंगी, आप इन गानों को एंजॉय कीजिए। वापस आइए समर के साथ, लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए ना।

वह पे जिस तरह शाम का

0: looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो. नाउ ऑन द गो. आज हम किशोर दा की बातें कर रहे हैं. ये है लेजेंड्स फिर से. उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं. सिंगापुर, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि किशोर दा कई एक्टर की आवाज बन गए थे. शुरू में तो वो खुद सिर्फ अपने लिए और देव साहब के लिए गाते थे, लेकिन बाद में जिनके लिए उन्होंने गाने गाए उनमें से एक नाम है राजेश खन्ना साहब का.

राजेश खन्ना के ज्यादातर गाने किशोर दा ने ही गाए हैं और सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक हिट रहे। कोई सा भी गाना उठाकर देख लीजिए आप। किशोर दा ने देव साहब के रोमांटिक गाने गाने के बाद काका के रोमांटिक गाने भी गाए। एक बार राजेश खन्ना ने बताया कि जब आराधना के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो किशोर दा एस डी बर्मन से पूछते हैं कि दादा इस फिल्म में हीरो कौन है, तो बर्मन दा ने कहा कि एक नया लड़का है, अभी दो चार फिल्में की हैं उसने। तो किशोर दा बोले पहले मैं उससे मिलूंगा, बाद में गाने रिकॉर्ड करूंगा। तो साहब राजेश खन्ना चले गए किशोर दा के घर। किशोर दा ने ना पानी के लिए पूछा ना चाय के लिए, बस उन्हें बिठाया और पूछने लगे कि क्यों करना चाहते हो यार फिल्में। तो काका ने बोला बचपन से एक्टिंग का शौक है और मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट के थ्रू मैं देश की सेवा करूँ। तो किशोर दा बड़े खुश हो गए और बोले कि अब मैं तुम्हारे सारे गाने रिकॉर्ड करूंगा। और काका बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा चाय लेंगे या कॉफी। मतलब जब तक उनके सवाल का सही जवाब नहीं मिल गया उन्हें, तब तक उन्होंने चाय कॉफी भी नहीं पूछी। तो ये सब किशोर दा के काम की ईमानदारी को दिखाता है। वो चाहते थे कि हर कलाकार अपना काम ईमानदारी से करे, कोई ना कोई मकसद लेकर वो आए इंडस्ट्री में। और ऐसे ही राजेश खन्ना का जब मकसद उन्होंने जान लिया तो उन्हें चाय कॉफी के लिए भी पूछा और उनके लिए काम करने के लिए भी राजी हो गए। फिलहाल मैं भी ईमानदारी दिखाता हूँ और आपको किशोर दा के गाए ये गाने सुनवाता हूँ। आप सुनते रहेगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स। फिर से आज किशोर दा की बातें कर रहे हैं हम।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स मेरे यानी समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हम जिस फनकार, जिस संगीत के बादशाह की बात कर रहे हैं वो हैं किशोर कुमार के। किशोर दा मल्टी टैलेंटेड कलाकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर तरह के काम कर लिया करते थे, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया आपको। सलील चौधरी जो कि एक मशहूर संगीतकार थे, उन्होंने एक बार बताया कि एक फिल्म के गाने रिकॉर्ड होने थे। फिल्म का नाम था हाफ टिकट। मेल सिंगर थे किशोरदा और फीमेल सिंगर थी लता मंगेशकर। लेकिन लता जी उस वक्त कहीं गई हुई थी या किसी वजह से आ नहीं पाई टाइम पर, रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो साहब प्रॉब्लम हो गई कि अब क्या किया जाए, स्टूडियो बुक था। तो किशोरदा ने सलील चौधरी जी से कहा कि मैं फीमेल वाला पार्ट भी गा लूंगा। सलील जी ने कहा, यार कैसी बातें करते हो किशोर, ऐसा थोड़ी होता है, तुम कैसे गाओगे। किशोरदा बोले, दादा एक बार ट्राई करके तो देखो, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो सलील जी ने कहा, यार चलो ठीक है, स्टूडियो बुक हो ही चुका है, रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़े उससे अच्छा है कि एक डमी बन जाएगा, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उन्होंने ऐसा गाया कि पता ही नहीं चला कि किशोरदा गा रहे। आप खुद सुन लीजिए इस गाने को।
2: आके

0: वो गुजरिया।
1: और साहब पूरा गाना किशोर दा ने गाया, मेल और फीमेल वॉइस दोनों में, तो है ना किशोर कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी। वेल, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें बताते रहिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल ये गाने आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं, वहां आकर कौन सा गाना और सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, मैं हूँ समर आपके साथ। कीप लिसनिंग।

0: किनारा।
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: हेलो एंड वेलकम बैक लेजेंड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक्चुअली लेजेंड्स फिर से रीलोडेड और आप सुन रहे हैं आज किशोर दा की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों किशोर कुमार एक ट्रेंड सिंगर नहीं थे, मतलब कहीं से उन्होंने संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये उनके अंदर का टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। शुरू में जब वो मुंबई आए तो जब भी वो कहीं गाते थे, किसी ऑडिशन को देने जाते थे, तो लोग कहते थे कि यार तुम केएल सहगल की नकल करते हो, कोई ऐसी थोड़ी सहगल बन जाता है। एक्टिंग के लिए भी लोग बोलते थे कि तुम नहीं बन सकते यार एक्टर। खैर यही सब बातें, ये उल्हाने, ये रिजेक्शंस किशोर दा के अंदर तक घुस गए, अंदर बैठ गए, उनको तीस पहुंचाते थे और उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। एक इंटरव्यू में अभिनेता इफ्तिखार ने कहा था,
3: वो इतना संकी था नहीं, जैसे प्रोड्यूसर लोग आए या कोई आया और उससे कहते हैं कि साहब किशोर साहब आपके लिए कॉमेडी रोल है। अच्छा भाई क्या है वो कॉमेडी? ये है कि आप लड़की के घर में आते हैं और आने के बाद दो खराबाजियाँ खाते हैं, हैरान। अब लोगों ने इस तरह से उसको कॉमेडियन क्या बल्कि अजीब किस्म का पागल बना दिया। वो होते होते फिर लोग कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है, हालांकि वो ऐसा था नहीं।
2: लेकिन किशोर दा ने अपने टैलेंट से सबको जवाब दिया। जिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनके स्ट्रगल के दिनों में उनका साथ नहीं दिया था वो अब किशोर दा के आगे पीछे घूमने लगे। और मैं आपको बताऊं, किशोर दा का अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देने का एक अजीब तरीका हुआ करता था, मतलब वो सीधे मुंह जवाब नहीं देते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार प्रोड्यूसर आया और बोला, दादा मैं चाहता हूं आप मेरी फिल्म में गाना गाओ। अब ये वो प्रोड्यूसर था जिसने कभी मना कर दिया था किशोर दा को, तुम गा नहीं सकते। खैर साहब अब जब वो आए तो किशोर दा ने इस बार उन्हें सीधे मुंह मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रख दी। कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म में गाना गाऊंगा लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि यहां से दूर वो जो नदी है उसमें तुम दो नाव का इंतजाम करोगे और हम दोनों सफेद धोती कुर्ता पहनेंगे और माथे पे तिलक होगा और तिलक में चावल जरूर होना चाहिए। उसके बाद दोनों का एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में होगा। ये अजीब सी शर्त रख दी उन्होंने। खैर प्रोड्यूसर थोड़ा समझदार था, वो समझ गया कि दादा गाना नहीं चाहते। तो दोस्तों ये भी एक टैलेंट ही है कि बिना सीधी बात कहे अपनी बात कह दी और समझ में भी आ गई, जो सिर्फ यूडलिंग किंग किशोरदा ही कर सकते थे। और मैं भी एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको उसी किंग के कुछ गाने सुनवा सकता हूँ। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर ये है लेजेंड्स फिर से। एंजॉय करते रहिए और वापस आइए, मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।

0: celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और आज का जो हमारा ये लेजेंड्स फिर से स्पेशल शो है, ये किशोर कुमार पर बेस्ड। आज हम किशोर दा को जी रहे हैं। अभी तक हमने बात की उनके मजाक के अंदाज की, उनकी शरारतों की, उनके टैलेंट की, लेकिन अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो है किशोर दा की लाइव परफॉर्मेंसेस की, जहाँ किशोर कुमार साहब ने दुनिया भर में कई लाइव कॉन्सर्ट्स किए। लेकिन शुरू में वो पब्लिक के सामने जाने से डरते थे, या यूं कहिए शर्माते थे। तो पड़ोसन फिल्म की सक्सेस के बाद सुनील दत्त ने सोचा कि इस फिल्म में म्यूजिक का लाइव कॉन्सर्ट भी होना चाहिए। तो ये नाथुला चले गए, नाथुला पास, जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है, एक आर्मी एरिया में, जहां आर्मी के जवानों को पता चला कि किशोर दा आने वाले, तो सारे जवान बर्फ के ऊपर बैठ गए और उनका वेट करने लगे। और गाना गाने के लिए किशोर दा के लिए लकड़ी का स्टेज बना दिया गया। अब जब किशोर दा स्टेज पर आए तो सबने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जोर जोर से तालियां बज रही थी, हल्ला हो रहा था, शोर मच रहा था। ये देखकर किशोर दा का मन करा कि कैसे गाऊंगा यार इनके सामने। लेकिन सुनील दत्त ने कहा कि आप घबराइए मत, हम आज ऐसे वैसे नहीं गाएंगे जैसे पड़ोसन में गाया था। आप मेरे पीछे खड़े हो जाइएगा और गाना मैं लिपसिंग करूंगा। तो साहब इस बात पर किशोर दा राजी हो गए। अब दत्त साहब आगे खड़े माइक के सामने और किशोर दा उनके पीछे। और जैसे ही किशोर दा मूड में आए, दत्त साहब ने पीछे मुड़कर देखा कि दादा आंख बंद करके मस्त गाना गा रहे हैं, तो वो तुरंत ही वहां से हट गए और फिर सबने जोर से तालियां बजाई। जब किशोर दा ने आंख खोलकर देखा तो एक बार तो वो दंग रह गए, लेकिन फिर माहौल को रंगीन बना दिया जैसे वो स्टूडियो में बना देते थे। और इसके बाद तो किशोर दा ने कई सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए और इतना क्राउड जुटता था उनके इन शोज में कि क्या कहें। देखने लायक होती थी वो भीड़ भी और उसकी दीवानगी भी, जो किशोर दा के दीवाने थे। मैं भी किशोर दा का एक दीवाना हूं और उन्हीं के कुछ और नगमे आप तक पहुंचाना मेरा काम है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। समर मेरा नाम है, लौटता हूं इन गानों के बाद। कीप लिसनिंग।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way. Cheers to your place.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: G-Mart, your personal grocer.
4: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर और ये है लेजेंड्स फिर से, जैसे आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। भाई अब इसे 24 घंटे 7 दिन सुन सकते हैं आप। आज हमने बात की किशोर दा के बारे में। किशोर कुमार, जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी। लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी गाया जा सकता है। उस तरीके से किशोर कुमार गाते थे, एक नया अंदाज उन्होंने क्रिएट किया और वो एक इतनी लंबी लाइन खींच गए कि उसकी बराबरी करना इम्पॉसिबल है अब किसी के लिए भी। हर कोई उनका फैन था, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, और आज भी है। किशोर दा जितना ऊपर से मजाकिया थे, उतने ही अंदर से वो संजीदा थे। बड़े गंभीर किस्म के इंसान थे, लेकिन एक बेहद कमाल के कलाकार थे वो। जहां उनकी प्रेजेंस होती थी, वो वहां के शहंशाह हो जाते थे। उनके न सिर्फ दर्शक या उनके गाने सुनने वाले फैन थे, बल्कि उनके साथी एक्टर भी उनके फैन थे।
2: किशोर दा एज एन एक्टर तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, एज ए सिंगर भी उस आदमी में इतना रेंज था, लेकिन सुनने में इतना आनंद आता था, चाहे वो कॉमेडी सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, सीरियस सॉन्ग हो, बेस वाला।

और किशोरदा की एक और खास बात थी, कोई भी एक गाना जिसे दो आर्टिस्ट ने गाया हो, जैसे मेल फीमेल या दोनों मेल हो, वहाँ किशोरदा का गाया हुआ गाना ही ज्यादा पसंद किया जाता था। फिर चाहे वो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं हो, या फिर प्यार का मौसम का तुम बिन जाऊं कहां। एक किस्सा शेयर किया था जावेद साहब ने, सागर फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड होना था, गाना था हो यूं ही गाते रहो मुस्कुराते रहो। अब इस गाने के रिकॉर्डिंग से पहले किशोरदा को हार्ट अटैक आ गया था, तो कमल हासन की आवाज थे बाला सुब्रमण्यम, तो उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड कर लिया गया। और जावेद साहब बताते हैं कि बाला साहब ने बेहद ही कमाल का गाया। जावेद साहब सोचने लगे कि किशोरदा इससे बेहतर गा पाएंगे या नहीं, और तबीयत भी खराब है। खैर कुछ दिनों के बाद किशोरदा आए और उन्होंने गाना रिकॉर्ड कर दिया, और जब गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया, मिक्स हो गया, तब सबने सुना।

सबने ही कहा कि किशोरदा किशोरदाई हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो ये था आज का किशोरदा स्पेशल आपके लिए। किशोरदा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में आज भी हैं, अपने टैलेंट से कल भी रहेंगे। ये कलाकार की जिंदगी है जो उसके जाने से खत्म नहीं होती है, उसके फन के ये कतरे यहाँ बिखरे हुए हैं और ये हमेशा उसको जिंदा रखेंगे। किशोरदा को सलाम। और ऐसे ही किसी एक और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूंगा जो लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सिंगर होंगे, जिसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा वेट। अभी दीजिए जाने की इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाइएगा, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
4: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: नाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
3: Mere Karan Arjun aayenge.
4: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: सिंगापुर। बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बीन बजा के सबका ध्यान खींच लो,
1: सबको चूना लगा लो, सबको टोपी पिला दो,
0: कोई साथ ना ले तो उसके खून से ही गो सींच लो।
1: जिंगुस्तान जिंदाबाद।

0: गरम गरम तेल दो, धीरे धीरे सारे बीमार खुद ही दौड़ जाएंगे। इनके मुद्दों के पीछे के मुद्दों को तुम स्टीम दो, खींचो नोचो पकड़ो पेल दो, सूखी सूखी नफरतों में गरम गरम तेल दो, धीरे धीरे सारे बीमार खुद ही दौड़ जाएंगे। इनके मुद्दों के पीछे के मुद्दों को तुम स्टीम दो।
1: 2018 है, देश को खतरा है, हर तरफ

0: kill them.
1: करण अर्जुन आएंगे
2: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: योर पासपोर्ट टू द वर्ल्ड एवरी मंडे मॉर्निंग फ्रॉम ग्लोबल हेडलाइंस टू अ पिंच ऑफ बॉलीवुड स्पाइस।
4: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
5: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
6: Check it out. Josh me raho.
7: Japan mein roti hui auraton ko milte hain handsome hug karne wale boys.
8: Wow. Hamare yahan to bas beta ro mat.
9: Ye milta hai. Yahan milte hain do karare papar.
10: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
5: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp,

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
4: रहो। मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर, दरवाजे खोल दो, रूल्स को दो दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि फ्राइडे की हवा बदल चुकी है। यस, वीकेंड ने एंट्री मार ली है और अब मंडे तक किसी को हमें रोकने की तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग सिंगापुर, मैं हूँ मुग्धा। सिंगापुर से लाइव आंसर हो चुका है आपका अपना मसी हैंगआउट 2.2। दिस इज रेडियो मसी 24/7 लाइव। आज का शो इज एब्सोल्युटली म्यूजिकल, क्योंकि आज की फिल्म जो हमने सेलेक्ट की है वो ही कुछ ऐसी है, इमोशनल भी है, आउट ऑफ कंट्रोल भी है, क्योंकि आज की फिल्म है रॉकस्टार। शुरुआत उस रानी की कहानी से होगी जो महल की सारी लग्जरी को छोड़कर रात में

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: यू नो व्हाट, फ्राइडे इवनिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूरे हफ्ते हम सबका एक ही वर्जन दिखता है, ऑफिस वर्जन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्जन, डेडलाइन वाला वर्जन, दिस वर्जन, दैट वर्जन, बस मतलब यूजुअली एक ही वर्जन। बट फ्राइडे आते ही ज़ू हिडन वर्जन इसे बाहर निकल के आता है। सडनली कोई सिंगर बन जाता है, कोई डांसर, कोई स्टोरी टेलर, कोई इवेंट प्लानर, और वो टैलेंट दिखाई देता है जिसके बारे में मंडे से लेकर थर्सडे तक किसी को पता भी नहीं होता। एंड हिडन बिगिनिंग्स की बात करें तो शाहरुख खान का एक बहुत ही पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है, एंड दैट्स अ सरप्राइज, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड के किंग बनने से पहले शाहरुख 1989 में इंग्लिश लैंग्वेज के एक टेलीविजन फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, इसमें एक बहुत ही छोटा और सपोर्टिंग रोल जो है वो कर चुके, उसमें नजर आए थे। अब ये अपीयरेंस उनके जो बॉलीवुड डेब्यू फिल्म आई ही दीवाना उसके भी पहले की थी। सोचिए आज इनके नाम से थिएटर्स का मूड बदल जाता है, डायरेक्टर्स का बदल जाता है, हवा का रुख बदल जाता है, लोगों की लाइफ जर्नी बदल जाती है। उनकी जर्नी कितनी अनफॉरगॉटेबल रही होगी। हवा हवा जो गाना हमने आज से लिखा उसकी फीलिंग यही तो है। जो वर्जन दुनिया ने अभी देखा ही नहीं है, फ्राइडे उसे बाहर निकाल के ले आता है, हवा देता है। तो आज अपना हिडन वर्जन जरूर बाहर निकालिए, हाइड मत करिए सिंगापुर।
2: यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा।
1: वॉल्यूम बढ़ाइए, मूड खोलिए और फ्राइडे को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बना दीजिए। दिस इज मी मुग्धा आपके साथ, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.0।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Well, फ्राइडे की हवा बदलती नहीं है और वीकेंड की शॉपिंग लिस्ट अपने आप लंबी हो जाती है। कैसे? किसी को घर के लिए कुछ हेल्दी चाहिए होता है, किसी को मंचिंग के लिए प्रीमियम नट्स चाहिए होते हैं, और उसके बाद अब तो हमें फेस्टिवल की भी तैयारी करनी है, बिकॉज गणपति बप्पा इज राउंड द कॉर्नर। इवन एक्चुअली तो इस फ्राइडे सारी दौड़ को एक ही जगह खत्म कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी फ्राइडे इवनिंग जो है या फ्राइडे नाइट ऐसी लंबी ग्रोसरी लिस्ट यहाँ वहाँ लेके भागते भागते खत्म हो जाए। वी हैव योर ओन पर्सनल जीजी मार्ट। आप इसको घर बैठे सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ से, और ऑर्डर अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको 100% नेचुरल प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्योर गुलकंद, रॉ मोनोफ्लोरल जामुन हनी, नो एडेड शुगर जामुन का जूस, अलग अलग वैरायटीज के हनी, चिया सीड्स, करी लीव्स पाउडर, हर्बल टीज, फ्लैक्स सीड्स, और फैमिली के लिए बहुत सारी हेल्दी चॉइसेस। तो वो लोग जो सोचते हैं कि फ्राइडे फन भी हो लेकिन हेल्दी भी हो, हेल्दी फन इज ऑन जीजी मार्ट। नट्स लवर्स के लिए भी वी हैव ह्यूज रेंज। आपको पता है क्रिशिबल नट्स जो है बहुत ही फेयर प्राइस पे आते हैं और बहुत अमेजिंग यहाँ पर आपको रेंज मिलेगी क्रिशिबल नट्स की। दे हैव ऑल लाइक सॉर्टेड कैशियूज, प्रीमियम वाले वो भी, प्लेन कैशियूज, चिली कैशियूज, सॉर्टेड कैशियूज, ड्राइड क्रैनबेरीज, बाय गॉड। एंड देन एज आई मेंशन्ड, हमारे गणपति बप्पा भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो गणेश चतुर्थी की जो तैयारी है वो साथ साथ चल रही है। जीजी मार्ट में आप गणेश आइडल्स की बुकिंग कर सकते हैं बिकॉज बुकिंग्स आर ओपन। आइडल्स की जो रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 सिंगापुर डॉलर्स से लेकर के 120 सिंगापुर डॉलर्स तक, एंड हर एक आइडल के साथ यू विल गेट अ फ्री पूजा किट। कलेक्शन के लिए डेट और टाइम ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर आप इनके फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 8085-6577। GGMartOnline.com ये है इनकी वेबसाइट। देखा, फ्राइडे सॉर्टेड।

0: Yogata.
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
6: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे तो बहुत ही मजेदार होता है, पर उसकी एक और मजेदार बात पता है क्या है? वो इंसान जो मंडे मॉर्निंग बिल्कुल साइलेंट मोड में था, फ्राइडे इवनिंग तक आते आते ग्रुप चैट में पता क्या लिख रहा होता है? गाइस, वेयर्स द पार्टी टुनाइट? यही तो मजा है। पूरे हफ्ते वो दबा हुआ इंसान जो है फाइनली हवा हवा का वर्जन लगते ही वापस आ जाता है। और जब कमबैक की बात आई है, मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आफ्टर 19 इयर्स इमरान हाशमी शिवम पंडित बनके फाइनली वापस आ रहे हैं। सबको पता है, लेकिन आवारा पंटू का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एंड व्हाट अ ट्रेलर मैन, इसको कहते हैं ट्रेलर। शॉर्ट, क्रिस्पी, अमेजिंग। द मूड इज डार्कर देन बिफोर, हेवी एक्शन एंड इमोशंस ऑफ कोर्स। दिशा पाटनी एंड शबाना आजमी एज अ विलन, बाय बाय गॉड। इस मूवी जो है वो रिलीज हो रही है 14th August को, आजादी के पहले की आजादी। Honestly, कुछ कैरेक्टर्स बर्थडे पर रहते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन ऑडियंस की प्लेलिस्ट और मेमोरी से वो कैरेक्टर्स कभी बाहर नहीं जाते हैं। एंड दिस इज व्हाई फ्राइडे इज स्पेशल। पूरे हफ्ते का वो रिस्पॉन्सिबल वर्जन चलता रहता है, एंड देन फ्राइडे आते ही ओरिजिनल ड्रामेटिक स्लाइटली आवारा वर्जन जो है वो कम बैक कर लेता है। तो अपने ना उस आवारा वर्जन को बिल्कुल मत रोकिए सिंगापुर। हवा हवा के साथ फर्स्ट आर यहीं पर खत्म होता है। आगे हम उस इंसान की बात करेंगे जिसने ये पूरा मूवी मैडनेस हमारे सामने रखा।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, इट्स फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे एंड द सेकंड आवर हैज ऑफिशियली बिगिन। और हमारी प्लेलिस्ट से निकलकर स्पॉटलाइट में आ चुकी है आज की फिल्म रॉकस्टार डैन। आपको पता है कास्टिंग और फ्राइडे प्लान्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब एक चीज तो कॉमन है, पहला ऑप्शन अक्सर फाइनल नहीं होता है। आप सोचते हैं डिनर यहाँ करेंगे और ग्रुप चैट में आपको 10 सजेशन आ जाते हैं, फाइनली आप कहीं और पहुंच जाते हैं और वो प्लान सबसे सही निकलता है। कुछ ऐसा ही हमारे सिनेमा वर्ल्ड में भी होता है। रणबीर कपूर की रॉकस्टार, जिसको आज आप सोच

जी आज के वक्त में चांदनी के कैरेक्टर में आप श्रीदेवी के अलावा किसी को इमेजिन नहीं कर सकते है ना। लेकिन सब कुछ अगर अलग तरीके से होता तो यश चोपड़ा पहले लीड रोल के लिए रेखा जी को लेना चाहते थे, लेकिन रेखा ने फिल्म की नहीं और श्रीदेवी का नाम सजेस्ट हुआ। एंड गेस व्हाट, सुपर हिट मूवी। और उस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे यशराज जी, यश साहब, और यशराज फिल्म्स बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इस फिल्म ने उनको बहुत राहत दी। और उसका एक गाने के सारे ही गाने इतने हिट हैं और हर एक गाने में जब श्रीदेवी को आप देखते हैं तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई और चांदनी हो सकता था, है ना। तो हुई है वही जो राम रचि राखा। यू नो, डोंट नो अबाउट दिस, हैवंट हर्ड अबाउट इट, कोई बात नहीं, होगा वही जो राम ने लिखा है, मतलब जो प्रभु ने लिखा है। वैसे राम से एक और बात याद आई, उसके बारे में हम बातें करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये ट्रैक आपके

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.0 और इस आर हम बात कर रहे हैं रॉक स्टार की। वैसे फ्राइडे को ना हम सबका एक मिनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देता है, इनफैक्ट हो ही जाता है। ऑफिस शर्ट से वीकेंड के आउटफिट पे आ जाते हैं, बंधे हुए बालों से बाल खुले हो जाते हैं एंड सीरियस फेस से देखो फोटो अच्छी आनी चाहिए वाले पोज में आ जाते हैं, एक्सप्रेशन चेंज राइट। सिनेमा में भी लुक सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता है, कभी कभी एक्टर का पूरा कैरेक्टर उसी से जज हो जाता है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग तो आप जानते ही हैं, उससे एक लुक उनका लीक हुआ है और वहां बहुत बदले बदले से अंदाज नजर आ रहे हैं जनाब के। वेरी इंटेंस अवतार और फैंस की क्यूरियोसिटी इस लुक से तो काफी बढ़ गई है। फिल्म मेकर्स जो है कैरेक्टर को बहुत छुपाना चाह रहे थे लेकिन एक ग्लिम्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। रॉक स्टार में भी जनार्दन से जॉर्डन तक का सफर आप देखिए, कपड़े बदले, बाल बदले, लैंग्वेज बदली, पर सबसे बड़ा फर्क था एनर्जी का। रणबीर कपूर ने जॉर्डन के लिए बहुत सारे मैनरिज्म्स और अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिकली अपने आप को शेप किया था। ही लर्न्ड अ लॉट, ही चेंज्ड अ लॉट फॉर दैट। मतलब कभी कभी ना नया लुक इज नॉट जस्ट मेक ओवर, नहीं वो एक अनाउंसमेंट होता है कि अब कैरेक्टर का नया वर्जन आने

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412 320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे इवनिंग आते ही सिंगापुर में एक छोटा सा ना ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही जाता है। ऑफिस लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वीकेंड्स की लाइट ऑन हो जाती हैं। हमारा साधारण सा वीकडे जो है वो एकदम रॉकस्टार मोड में आ जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं रॉकस्टार की, जहाँ पे जनार्दन जब जॉर्डन बन के स्टेज पे आया, स्पॉटलाइट अपने आप घूम गई क्योंकि और कोई दिख ही नहीं रहा था। एनर्जी वॉज चेंज एंड बिल्कुल वैसे ही सिंगापुर के 61st बर्थडे सेलिब्रेशन में एक एक्स्ट्रा ब्रिलियंस एड कर रहा है जोया लुकास, द नेशनल डे स्पेशल वन नेशन इन फाइनाइट ब्रिलियंस के साथ। यू नो, जब ये आता है स्टेज पे तो सारे इधर उधर हो जाते हैं, फैक्ट्री रहता ही नहीं है। डायमंड ज्वेलरी परचेज पे पूरा 9% GST अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पे आपको 30% का फ्लैट ऑफ मिलने वाला है। स्टोर्स में आप जाएंगे तो आपके लिए स्पेशल इन स्टोर ऑफर्स भी हैं, क्योंकि बिगर सेविंग्स हो तो सेलिब्रेशन और थोड़े ब्राइटर हो जाते हैं ना। नाउ दिस ऑफर इज वैलिड जस्ट टिल 10th August 2026 एंड प्लीज रिमेम्बर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो इस फ्राइडे अपना वीकेंड थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए वीकेंड लुक, और सिंगापुर के हर माइलस्टोन को ना सेलिब्रेट करिए उस शाइन की तरह जो एक रॉक स्टार की स्पॉटलाइट की तरह दूर से दिखती है। जोया लुकास, वन नेशन इन फाइनाइट ब्रिलियंस, और मुग्धा के साथ मस्ती हैंगआउट 2.0 का रॉक स्टार आर जारी है। मिलूंगी आपसे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning.
7: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
8: फ्राइडे इवनिंग है, प्लान्स, म्यूजिक, मस्ती सब अपनी जगह पर, एक छोटी सी स्टोरी पूरा मूड सॉफ्टन कर देती है, राइट? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक छोटी सी बहन रोज लंच ब्रेक पर अपने भाई के पास जाती है, उसको खाना खिलाने उसके क्लासरूम में, उसके पास बैठती है, उसको बहुत प्यार से खिलाती है, एंड क्वाइटली वो अपने दिन में वापस चली जाती है बिकॉज द ब्रदर इज स्पेशली एबल्ड, ही हैज नो आर्म्स, तो ये बहन जो है अपना फर्ज प्रॉपरली पूरा कर रही है। सी, नो बिग डायलॉग्स, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो ड्रामा, क्या है वहां पे, जस्ट केयर। रॉकस्टार की बात करें तो एक कॉन्ट्रास्ट है जो बहुत ही खूबसूरत है। जॉर्डन का प्यार वॉज लाउड, सॉन्ग्स, पेन, मैडनेस, क्योंकि उसको कहा ही गया था कि जब दिल टूटेगा ना जॉर्डन, तभी म्यूजिक निकल के बाहर आएगा, तभी तो मजा आएगा। लेकिन प्यार हमेशा रॉकस्टार वॉल्यूम में हो में जरूरी नहीं है ना, कभी कभी वो उतना ही सिंपल होता है जितना कि आप बहुत प्यार से सामने वाले को लंच बॉक्स खोल के खाना खिला रहे हो। जैसे कि जॉर्डन का बाद वाला प्यार, चुपचाप वाला प्यार, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप फिर को स्कूटर पे बिठाया और पेरिस की गलियों में घूम रहे। तो इस फ्राइडे ना अपने लोगों के साथ प्लान जरूर बनाइए और उनकी केयर करके उनको थोड़ा वक्त भी दीजिए, क्योंकि लिस्ट तो बाद में बदल सकती है पर अपना कौन है ये फीलिंग कभी नहीं बदलती। और एक बार चली गई तो वापस भी नहीं आएगी। सो मुग्धा के साथ मस्ती हैंगआउट 2.0 यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, जा रही है भाई। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, स्टे कनेक्टेड।

0: நன்றி நமஸ்காரம்.
1: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ.
2: हाय वेलकम बैक सिंगापुर, शो का थर्ड आवर शुरू हो चुका है एंड फ्राइडे नाइट ऑफिशियली हमारी है. पूरे हफ्ते शॉर्टकट्स ढूंढने का टाइम नहीं मिलता है ना, लेकिन वीकेंड आते ही दिल बोलता है लॉन्ग रूट क्यों ले जब हमारे पास अपना खुद का तरीका अवेलेबल है. अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक 69 ईयर ओल्ड मैन ने शॉपिंग पर जाने के लिए कार नहीं सीधा हेलीकॉप्टर ही निकाल दिया. वाओ, हमें से कौन कौन फ्राइडे को अपना हेलीकॉप्टर निकाल रहा है? बिकॉज सी उनके हिसाब से हाईवे से ड्राइविंग वॉज टू लॉन्ग. और स्टोर के पार्किंग लॉट में वो सेफली उतरे, लाइसेंस्ड पायलट थे, सारे रूल्स फॉलो किए, ना कोई वायलेशन हुआ ना कोई एरर. शॉपिंग ट्रिप रॉकस्टार जैसे हो गया, रॉकस्टार शॉपिंग ट्रिप. एंड ऑनेस्टली हमारा इस आर का जो हीरो सॉन्ग है दैट इज साडा हक एथे रख, वही तो मूड है. हर कोई वीकेंड एक ही तरीके से क्यों मना, किसी का हक है लॉन्ग ड्राइव का, किसी का है सोफा पे सोने का, किसी का डांस फ्लोर और किसी का हेलीकॉप्टर से शॉपिंग करने का. अपनी चॉइस है यार, एंजॉय करो क्योंकि रूल्स के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी और को डिस्टर्ब किए आप जो भी करते हैं वो साडा हक है तेरा, है ना. पूरे हफ्ते का जो शेड्यूल था वो दुनिया का था. फ्राइडे नाइट पर इट्स साडा हक,

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से
2: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: हाय, फ्राइडे नाइट पर एक हक तो सबका बनता है, क्या पूरे हफ्ते का काम हिसाब किताब सब एक जगह, खाना खाने का हिसाब बिल्कुल अपना होना चाहिए, और अगर आपका मूड है रॉयल नॉर्थ इंडियन फीस्ट का, हियर शाही महारानी एंटर्स लाइक अ बॉस। सिंगापुर के 61st बर्थडे पर दो स्पेशल सेलिब्रेशंस पूरे अगस्त, मंडे से फ्राइडे तक दोपहर 12 से लेकर के 2:30 तक उनका वीकडे बुफे है फॉर टू ओनली इन 61 प्लस डॉलर्स। जी, यूजुअली ये 68 का होता है। सिंगल डिनर के लिए आपको 38 देने हैं, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 25, और उससे छोटे बच्चों के लिए फ्री है। लेकिन हाँ, वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पर ऑफर वाले नहीं है, सो यहाँ थोड़ा आपको उदास होना पड़ेगा। 9th अगस्त को एक बहुत ही स्पेशल नेशनल डे लंच बुफे है, अडल्ट के लिए $58, चिल्ड्रेन 7 से 12 के लिए 40, हम 7 साल से छोटे बच्चे फ्री हैं। मैं तो नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बताऊं, हाँ, साथ में पराठा स्टेशन है लाइव, लोकल चिकन करी आपको यहाँ पर मिलेगी, बच्चों के लिए स्पेशल मेन्यू है, बलून्स भी साथ में है। तो साडा क्लेम करिए इस बार, फ्राइडे को फैमिली फ्रेंड्स कॉलीग्स उनको साथ में लेके जाइए, टेबल रिजर्व करिए और शाही महारानी में खाना एंजॉय करिए, क्योंकि वीकेंड पर गुड फूड साडा हक है। स्टे कनेक्टेड।

0: looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412 320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
5: Check

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे नाइट आते ही हम सबका एक मूड उड़ जाता है, वीकेंड है, जो मन करे करेंगे, पर थोड़ा करेक्शन जरूरी है। अपना हक अपना बजट अंदर मतलब होना चाहिए, अपने बजट के अंदर। एक क्लास 8 स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करने के लिए अपने पिताजी का फोन ले गया, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके एक बहुत ही अजीब सा गेम है जो ऑनलाइन खेलते हैं बच्चे, सम रोबोट रोबोट से कनेक्टेड है, और उसको खेलते खेलते उस बच्चे ने अराउंड 42,000 वर्चुअल करेंसी पर खर्च कर दिए। वर्चुअल करेंसी पर 42,000 रुपीज वर स्पेंट। और फैमिली ने बताया कि पैसा स्कूल फीस, लोन रीपेमेंट इन सबके लिए बहुत जरूरी था। मामला मजाक से सीधा फाइनेंशियल स्ट्रेस पर पहुंच गया भाई। ऑनेस्टली फ्राइडे फ्रीडम बहुत अच्छी बात है, गेमिंग करो, शॉपिंग करो, डेजर्ट्स ऑर्डर करो, पूरा हफ्ता एंजॉय करो, लेकिन साडा का मतलब ये कहीं नहीं है कि फैमिली अकाउंट भी साडा हो गया। दैट इज नॉट योर चॉइस बेबी। इस मामले में मैं पूरा फैमिली के हक में हूँ, ये गलत हुआ। अपनी चॉइस पे आपका हक है, लेकिन दैट वॉज योर फादर्स फोन एंड फैमिलीज अकाउंट, दैट वॉज नॉट योर हक, दैट वॉज देयर साडा हक, है ना। पासवर्ड, पेमेंट, परमिशन, इन तीनों के रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। दीज थ्री पीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीपी, पासवर्ड, पेमेंट, परमिशन। क्या बात है, पासवर्ड, पेमेंट, परमिशन। धुरंधर याद आ गई मुझे, क्या था, ईंधन, हौसला, समथिंग समथिंग, पासवर्ड, पेमेंट, परमिशन। देखो वीकेंड फन तब तक ही फन है जब तक कि मंडे को बैंक स्टेटमेंट देख के आपके होश नहीं उठ जाए, समझ रहे हो। घर में लाइव कॉन्सर्ट नहीं शुरू

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
4: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
5: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: और बस आज की मस्ती हैंगआउट 2.0 का फाइनल मोमेंट आ चुका है। फ्राइडे की शुरुआत वॉज विद एन अमेजिंग सॉन्ग जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है, द मोस्ट अंडररेटेड लिरिकल सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड, हवा हवा। थोड़ी आजादी, मस्ती अपने मन का करना। फिर रॉकस्टार ने दिखाया हर लाउड परफॉर्मेंस के पीछे एक कहानी होती है, एंड देन वी केम टू साटाहक कैथेड्रल। एंड करने के लिए परफेक्ट सॉन्ग। लेकिन एक बात है, अपनी आवाज पर आपका भी हक है। हो सकता है कि आपकी आवाज रेडियो के लिए हो सकता है कि आप एक पॉडकास्टर हो, कैमरा के सामने आप प्रेजेंटर भी बन सकते हैं, बनना चाहते हैं अगर तो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी और के लिए उसकी आवाज के पीछे का मीडियम आप बन सकते हैं, इवेंट होस्ट कर सकते हैं और सबको एंटरटेन कर सकते हैं ऐसे करके, या फिर सिंपली पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, राइट? इसी जर्नी के लिए मस्ती मीडिया एकेडमी, मस्ती मीडिया नेटवर्क का मीडिया एनरिचमेंट प्रोग्राम है। ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, मीडिया प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम सब यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो है एक्टिव ब्रॉडकास्टर से सीखते हैं, रियल वर्किंग स्टूडियो एनवायरमेंट का एक्सपोजर उनको मिलता है, एंड दैट्स अमेजिंग। सब जगह ये सब कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त। एकेडमी में बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीन लेवल के लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, वॉइस, स्पीच, रेडियो, पॉडकास्ट होस्टिंग, इंटरव्यूइंग, स्टोरी टेलिंग, कॉन्टेंट प्लानिंग, लाइव होस्टिंग, सिमुलेशन, हैंड्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग प्रैक्टिस, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। सेशंस आर वेरी फ्लेक्सिबल और लेवल्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा ही। कुछ सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को हम सीधा अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज और डिजिटल कंटेंट या दूसरे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने का मौका भी दे सकते हैं। यू कैन बी इन द स्टूडियो, द लाइव स्टूडियो, यू कैन बी, यू नो, यू कैन बी। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई एवरीवेयर। डिटेल्स और एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म है आपको info@radiomasti.com.sg पर अपना एक प्यारा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखकर भेजना है। तो इस वीकेंड सिर्फ प्लेलिस्ट को लाउड मत रखिए, अपनी आवाज को मौका दीजिए। मैं हूं मुग्धा, आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट 2.0 ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज हवा बदली, दिल रॉक स्टार हुआ और एंड में हक क्लेम किया। इट्स फ्राइडे पीपल, ये हमारा है। गुड नाइट सिंगापुर, वीकेंड आपका है, ये आपके हवाले। टाटा, बाय बाय।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: की लत्ती।
1: ओले पेट्रोल ते पवाए नहीं।
2: कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: कभी कभी जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए,
1: झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल,
0: कि जैसे तुझको बनाया गया

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सिर्फ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आप

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What? Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: go, baby, baby.
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम हैं ना।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: Yo, boys, I am singing song. Soup song.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: कर है? तुम सुन नहीं रहे हो यार।
1: ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा मिल तो दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा मिल तो दे जाना।
2: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: तत मुरली की धुन सुन आई दादे यमुना के तट पर, यमुना के तट पर नीरस करत उत हिरत हिरत उत हिरत हिरत ऐसी चंद्र तपन जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि जिगनादि

धुनक धुनक जब चुड़िया खनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी धुनक धुनक जब चुड़िया खनकी धुनक धुनक जब चुड़िया खनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी मृदंग ठनका धक धक धक धक लागिन देश दे छगन दादा किट धक धक धक छगन धक धक छगन का किट धक किट धक छगन का धक धक नदा दादा किट धक छगन का दादा का मान गई दादा मान गई दादा मान गई दादा Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

अरशद उच्चा असा उच्चियां दे संग लाइयां, मायनी भी मेरा मुर्शद उच्चा।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 live. Have a musti bhara weekend.

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: ओए हॉली हॉली

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start the fun.